0: लाइक अ गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
1: चुप चुप चुप चुप चुप चुप

0: ये है Lyca Gold.
1: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Lyca Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा ना रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

पावेरा सुनिए हाथ वैसगा नानक भक्तां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे।

जाने मन कोए, मन्ने सुध होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

पावै साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

लिखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाया नदियां ते वहां।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एक आवार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: चलो जाइए एक नवा सफर पर
4: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचीसन फॉल्स
5: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
6: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
7: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation.
7: In Dubai.
8: Hillaro અને ઉમ્રો જેવી acclaimed ગુજરાતી ફિલ્મ્સના નેશનલ એવોર્ડ વિનિંગ ડિરેક્ટર અભિષેક શાહ ફરી એકવાર લઈને આવ્યા છે એક ઇમોશનલ કોમેડી
9: તમારો તો જિંદગી છે કે ફિલ્મની વાર્તા
8: એક ઇવ હાર્ટ જે કઈ ફીલ કરતું નહોતું બટ વન બીટ એન્ડ એવરીથિંગ ચેન્જ
10: તમારું હૃદય ધબકારો ચૂકી જાય છે
8: ધબકારો સ્ટારિંગ દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ ઇન સિનેમાઝ નિયર યુ
11: એક બઢિયા કડક गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए
12: अरे समझो हो गया रॉयल चाय है ना अब भी बन जाएगी सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो चाय तैयार वो भी रॉयल टेस्ट के साथ रॉयल चाय झटपट कहीं भी कभी भी
13: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद
14: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
13: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
15: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
16: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store from stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
17: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists.
16: Bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
17: Call today on 01923 883 100
16: or go to skylordcruiseandholidays.com.
17: Book with confidence.
16: We're Atoll protected.
18: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai
3: Laika Gold.
0: Laika Gold, traffic and travel.
2: M11 South, usual delays 15 minutes before North Circular Road. The A12 West at Redbridge Roundabout. We've got travel time now of 10 minutes. And the A13 Westbound from Raynham to Barking and the Lodge Avenue flyover, 25-minute queues. Newham Way on the A13, it's slowing now for 15 minutes at the Canning Town flyover. And A2 Shooters Hill Road, it's just your usual delays there, 15 minutes west from Blackheath Common to Deptford Bridge. A1 South, we've got queues at the Stirling Corner and the M4 onto the elevated section, 20 minutes from Hayes to Brentford. Heathrow Airport, all flights from the UK and Bahrain still reduced because of the conflict, so check before travelling. And that's the latest traffic and travel.
4: Shout out to the savvy ones tuned in across the UK.
5: Who? Me?
4: Yeah, you. The ones who know a good deal when they see one. Like the house proud who protect their manor from broken branches to burst pipes. The dog walkers who take the lead when comparing pet cover for their pampered pooches. And the drivers with breakdown cover belting out those power ballads. Here's to all of you making smart choices and finding your insurance at
6: Go.compare.
4: Now that's savvy.
3: Laika Gold.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
8: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आवे छे एक इमोशनल कॉमेडी।
10: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
9: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु।
10: अरे वार्ता अधूरी छे भाई।
9: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
11: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
9: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई।
12: लोकेशन अहीं ना करेला अहीं ज भोगवाना छे।
9: इन सिनेमास नियर यू।

0: जायका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: London Entertainment di sab to vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, te hor zabardast artists. 9th May, shaam 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
6: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 0737522418. Choose buybullion24.co.uk today.
7: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
8: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
7: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स
8: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
9: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए यूनिक मसाला चाय इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार
10: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी
11: मत जाओ कान्हा क्यों जा रहे हो
12: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
10: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
12: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
10: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू
12: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
13: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
14: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
13: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
14: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
13: दर्शन पण अने यूरोप पण
14: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर्स साथे
13: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
14: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
15: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन or in store from stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus don't wait the offer ends on the 10th of may
16: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू इसे अकेले फेस मत करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 आज ही एक्शन ले 0208-907-2444
17: Like a Radio Network Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: गुड मॉर्निंग टू यू। रवि शर्मा जी का शो है लेकिन हॉट सीट पर है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। चलिए मैं पहुँच गई हूँ स्टूडियो में, आप भी अपने अपने रेडियो सेट के करीब हो जाइए। अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन करने के लिए पहुँच चुकी हूँ मैं। आज के प्रोग्राम में भी कुछ न्यूज़ हेडलाइंस होंगी, चिंतन भी होगा प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में, लेकिन शुरू करते हैं हम बैक टू बैक दो गीतों के साथ।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
0: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Leica Radio Network.

0: The Ravi Sharma Show on Leica Gold.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: भाई अगर आपको SBI UK के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं इंडिया में कहीं भी तो देर मत कीजिएगा, बहुत अच्छा रेट आपको मिल रहा है और आप जल्दी से पैसे एक्सचेंज करा भी सकते हैं। और आज आपको रेट क्या मिल रहा है, 128 रुपीस एंड 5 पैसास अगेंस्ट 1 स्टर्लिंग पाउंड। और किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और बाय यूजिंग द यूनो SBI UK ऐप ऑन योर टेलीफोन।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: भाई वैसे तो ये गाना बैक टू बैक का था, पर किस तरह से जंप हो गया, कोई बात नहीं।

0: करते हैं।
1: आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, बहुत से लोग मिलते हैं आपको आते जाते, लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो आपके दिल में बस जाते हैं, जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, जिनसे वेल हो सकता है प्यार भी हो जाए। लेकिन बहुत सी बार हम इतने लोगों को मिलते हैं और बस देखते हैं, दूर से स्माइल भी हो जाती है, लेकिन उन्हें हम थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी, वेलकम ऑन बोर्ड, और मैं कोशिश करूंगी अच्छे अच्छे गीतों से आपका साथ निभाती रहूं। तो आइए बढ़ते हैं इन मैसेजेस की तरफ, और मैसेजेस के उस पार एक और बहुत प्यारा सा गीत किशोरदा की आवाज़ में।
2: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM।
3: बोले तू क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
3: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।

0: जैसे
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट क्वालिटी फूड स्टोर्स एंड ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशनवाइड
1: हेल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी
2: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता
1: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नहोतु
3: मारी वार्ता अधूरी छे भाई
1: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड
4: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे
1: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई
5: लोकेशन अहींना करेला अहींज भोगवाना छे
1: इन सिनेमास नहीं आयु
6: TV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
8: 0208574841
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574841 एट ऑल प्रोटेक्टेड
9: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं अभी कॉल करें 0208907244 अपनी फैमिली को सिक्योर करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208907244
10: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
11: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
10: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
12: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
13: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
6: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई अब ज़रा न्यूज़ की तरफ भी चलेंगे और बता दें आपको कि क्या चल रहा है विश्व भर में। कुछ दुनिया के कुछ इंडिया की खबर आप तक पहुंचा दें और सबसे पहली खबर है क्या वो जानिए। अमेरिका और ईरान के बीच होमर्स जल डमरू मध्य का चरणबद्ध तरीके से खोलने पर सहमति बनी है। इसके तहत अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी में ढील दी जाएगी और फंसे जहाज़ों को जल्द ही निकलने की वहां से अनुमति मिल सकती है। इस कदम में दुनिया भर के तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अरब्स के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये समझौता गुरुवार को यानी आज दोनों देशों के बीच बड़े तनाव के बाद हुआ है। अमेरिका ईरान संघर्ष की शुरुआत में ईरान ने होमुज को बंद कर दिया था, उनके जो जल डमरू मध्य थे उन्हें बंद कर दिया था, जिसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी। ट्रंप प्रशासन ने फिर तेज़ किया डिपोर्टेशन, धीमा फैसला देने वाले इमिग्रेशन जजों को हटाने से जुटा अमेरिकी न्याय विभाग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने देश में फिर से डिपोर्टेशन प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है और इसके लिए अमेरिका का न्याय विभाग इसे इमिग्रेशन जजों को उनके पद से हटा रहा है जो फैसला सुनाने में तथाकथित देरी कर रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और एक बात एक्शन अटॉर्नी जनरल डॉट ब्लैच ने कही और ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन अदालतों को नया रूप देना चाहता है। 37 लाख लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करके बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन हो सकती है। शुभेंद्र अधिकारी इंडिया की खबर है। केपीए की हत्या, पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बुधवार को रात शुभेंद्र अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई और इस मामले की जांच के लिए अब बिठाई गई है SIT बिठाई गई है और टीम को IG लेवल के अधिकारी लीड करेंगे। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है और बुधवार को रात नॉर्थ 24 परगाना में शुभेंद्र अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से बंगाल की सियासत गर्मा गई है और पुलिस अधिकारी जो हैं वो भी हमलावरों की तलाश में जुटे हुए हैं। और बॉलीवुड से एक खबर आई है कि अक्षय कुमार बैक फिल्में करते रहे और हाल ही में उनका एक आई ऑपरेशन हुआ है और ये कहा गया है कि वो काफ़ी तकलीफ़ में हैं, जिसके बाद उन्होंने सर्जरी कराने का फैसला किया और फिलहाल एक्टर कुछ दिनों के लिए आराम कर रहे हैं। ये थी कुछ खबरें इधर उधर की। और चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उन सभी अपने साथियों का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने बड़े प्यार से मुझ तक मैसेजेस भेजे हैं। थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिएगा। बहुत से गीत हैं और बड़ी चॉइस है, लेकिन कभी कभी सरिता को भी समझ नहीं आती है कि कौन सा गीत प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वैसे ये गीत बहुत देर हो गई है, हमने सुना नहीं है और कोका नूडल्स वाले ये गाना आप तक पहुँचा रहे हैं। कौन सा? फ्रॉम द फिल्म एक तुझे के लिए। कौन सा हो सकता है, सोचिए।
0: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour sponsored by Coca Noodles is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: बहुत ही प्यारा सा गीत था एक दूजे के लिए, फिल्म रति अग्निहोत्री और कमल हसन ने इस फिल्म में काम किया था एंड गीत आपने सुना लता जी की आवाज़ में। और जो मेरे साथ ही बड़े प्यार से मैसेजेस लिख रहे हैं और कह रहे हैं वी आर वेटिंग फॉर द चिंतन, यस चिंतन विल बी हेयर, यस चिंतन सुनाऊंगी मैं 11 बजे की खबरों के एकदम बाद। और अब कुछ मैसेजेस हैं, उसके बाद एक और बड़ा प्यारा सा गीत है एंड जो अभी तो नहीं न्यूज़ के करीब हैं हम, पर बहुत जल्दी न्यूज़ के करीब भी पहुंचने वाले हैं। अब मुझे आपने ये बताना है कि किस जरिए से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। वी आर अवेलेबल ऑन लाइका गोल्ड, जो है लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंची है, पर मैं इस वक्त लाइका गोल्ड के स्टूडियो में हूँ। अवेलेबल ऑन 10:35 AM DAB, अलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com। सो जिस भी ज़रिए से आप सुन रहे हैं मुझे अपने होने का एहसास दिलाइए। और जब मैसेजेस लिखते हैं तो ये भी बताइए कि कौन से एरिया में हैं आप।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है
4: Laika Gold
5: TravelHubWorld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Every morning a shopkeeper opens his doors.
12: Lights on, shutters up, staff ready.
11: But today's customers don't start on the high street.
12: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
11: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
12: They walk into your competitors.
11: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
12: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
12: 100% halal meat, prepared with care every day.
13: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
12: And don't forget, get your favourite frozen items too.
13: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
12: There is only one.
1: Sade 10th Guru Govind Singh Ji Maharaj da Pavitr Janam Sthan Takht Shri Harminder Ji Patna Sahib de लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते। रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
14: Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
12: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
14: Call today on 01923 883 100
12: or go to skylordcruiseandholidays.com.
14: Book with confidence.
12: We're atoll protected.
3: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
7: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Like a Radio. Finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: सेल्स हर इवेंट को खास बनाए। फौरन उनका फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजल्स कुचोर साउथहॉल
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus, beautiful jewelry and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
3: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है,
4: कहीं भी घूम कर आइए। फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208954007। दैट्स 0208954007। आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
5: ट्रेवल इन स्टाइल,
6: ट्रेवल इन स्टाइल,
5: ट्रेवल इन स्टाइल।
7: मॉम, आई एम आउटसाइड। यस, लिटरली जस्ट लैंडेड।
8: वेट, हाउ आर यू कॉलिंग ऑलरेडी? आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर वाईफाई।
7: ओह, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
15: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
16: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
14: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
16: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
14: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
16: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
18: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
19: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold.
9: The Ravi Sharma Show on Leica Gold.

कभी कभी जिंदगी में खुशियों की सबसे ऊंची छत पर हम खड़े होते हैं और वहां खड़े होते हुए भी किसी रिश्ते की नींव अचानक पैरों तले से खिसक जाती है। शहनाइयों की गूंज, फूलों की खुशबू, मेहमानों की रौनक, सब कुछ एक पल में फीका पड़ जाता है जब घर की सबसे बड़ी ताकत, सबसे गहरी ममता और सबसे सच्चा रिश्ता, एक माँ और बेटे का रिश्ता, किसी गलतफहमी की पहली ही हवा से कांपने लगे। आज की कहानी सिर्फ एक बहू, एक सास या एक बेटे की नहीं है। ये कहानी है उस माँ की जो अपनी पूरी उम्र बेटे के लिए जीती है और फिर एक दिन उसी बेटे की एक नज़र, एक सवाल उसके दिल को ऐसे तोड़ देता है कि आवाज़ भी नहीं निकलती। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ममता, भरोसे और टूटे हुए दिल की सच्चाई से भरी कहानी।

शादी के गीतों की गूंज अभी भी घर की दीवारों पर जैसे मुस्कुरा रही थी। 3 दिन की थकान, मेहमानों की रौनक, रस्मों की भागदौड़, सबके बीच आज दीनदयाल जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है। उनका इकलौता बेटा अभिनव आज अपना घर बसा रहा था। उन्होंने बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद की और नींद ने उन्हें अपनी गोद में समेट लिया। उस घर की असली धड़कन थी सुमन जी। उनके लिए आराम अभी भी दूर था। सुमन वो माँ जिसने अपनी जिंदगी का हर मौसम सिर्फ एक ही सोच के साथ जिया था, मेरी बहू आएगी तो मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगी। थकी हुई थी हाँ, लेकिन दिल में एक ठंडी सी मीठी सी हलचल थी। रसोई में खड़े खड़े वो दूध को उबलते हुए देख रही थी, पर मन अतीत में कहीं भटक रहा था। वो रातें जब अभिनव को बुखार होता था और वो खुद गीले में सोकर सूखे में उसे सुलाती थी, वो दिन जब खुद पुरानी साड़ी पहनती थी लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े ज़रूर लेकर आती थी, वो पल जब उन्होंने सोचा था बुढ़ापे में हमारा सहारा यही बेटा होगा और उसकी पत्नी मेरी बेटी। आज उनका 25 साल का पुराना सपना पूरा हुआ था। बहू घर में आ गई थी और मैं अब उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, ऐसा ही सोचा सुमन ने। यही सोचते हुए उन्होंने केसर वाला दूध चढ़ाया, न्यूली मैरिड के लिए नाश्ता तैयार किया, प्यार से, दुलार से, उम्मीदों से। और इधर अभिनव और मानसी अपने सजे हुए कमरे में आराम कर रहे थे। रात भर की रस्मों और सफ़र के बाद दोनों बेहद थके हुए थे। कुछ देर पहले ही सुमन उनके कमरे में गई थी

कुछ देर पहले ही सुमन उनके कमरे में गई थी उनके कपड़े सलीके से रखने के लिए, बहू का माथा चूमने और उसे आराम करने की हिदायत देने। उनके दिल में एक ठंडक थी, अब बुढ़ापे में एक बेटी का साथ मिल गया। रसोई में काम करते हुए सुमन मुस्कुरा रही थी। उसे याद आया जब अभिनव छोटा था और आज वही बेटा अपना घर बसा रहा था। ये सोचकर उसका दिल भर आया। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। सुमन ने मुड़कर देखा, अभिनव खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ था जो उन्हें चुप किया। एक बेचैनी, एक झिझक, एक अनकहा आरोप। अरे बेटा, तू उठ गया? मानसी क्या सो रही है? मैं क्या चाय नाश्ता बना दूं, तुम्हारे कमरे में ले आऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक कठोरता थी। माँ, मानसी कह रही है कि उसका लाल पर्स कहीं मिल नहीं रहा है। उसमें कैश भी था और 2 सोने की अंगूठियां थी। आप कमरे में आई थी, क्या आपने कहीं रख दिया? सुमन ठिठक गई। लाल पर्स? नहीं बेटा, मैंने तो बस कपड़े अलमारी में रखे थे। क्यों, क्या हुआ? कमरे में सिर्फ आप ही आई थी माँ, तो उसने सोचा शायद आपने उसे कहीं रख दिया है, इसलिए पूछने आया हूँ। ये सवाल नहीं था, ये एक तीर था जो सीधे उस माँ की आत्मा में जाकर लगा। ये शब्द नहीं थे, ये किसी पिघले हुए शीशे की तरह थे, जिसने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। वही बेटा आज सवाल करने आ गया। मानसी का शक पेनफुल था, दुखद था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था अभिनव का अपनी माँ पर भरोसा ना करना। रसोई में उबलते हुए दूध की आवाज जैसी अचानक थम गई। समय रुक गया, हवा भारी हो गई। क्या मतलब है तेरा अभिनव? उनकी आवाज कांप रही थी। मानसी को आए हुए 4 घंटे भी नहीं हुए और उसे लगता है कि उसकी सास ने उसके गहने चुरा लिए, उसके पैसे चुरा लिए। अभिनव झुंझलाया, माँ चुराने की बात नहीं है, वो बस पूछ रही है, आप बात को बढ़ा रही हैं, अगर आपने रखा है तो दे दीजिए ना।

सुमन जी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पहाड़ रख दिया हो। दुख मानसी के शक का नहीं था, वो तो पराई थी, उसे क्या पता इस घर की ममता का इतिहास। दर्द था तो सिर्फ अभिनव का, जिस बेटे को उन्होंने अपने प्यार से पाला था, जिसके लिए अपनी हर इच्छा कुर्बान की थी, जिसे सही गलत की पहचान सिखाई थी, वही बेटा आज अपनी पत्नी के चंद शब्दों पर, अपनी माँ की नीयत पर सवाल उठा रहा था। क्या वो इतना नहीं कह सकता था, मानसी मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या एक माँ का 25 साल का प्यार एक लड़की के 4 घंटे के साथ ही हल्का पड़ गया। उनके हाथ से छलनी गिर गई, पैर कांपने लगे और वो रसोई के फर्श पर बैठ गई टूट कर, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी बेटे से कहा, ठीक है बेटा, मैं ढूंढती हूँ, तू जा, मैं ढूंढती हूँ ना, उन्होंने किसी तरह कह दिया। अभिनव चला गया बिना ये समझे कि वो अपनी माँ के दिल में कैसी दरार छोड़ गया, और वो वहीं रसोई के फर्श पर बैठ गई टूट कर चुपचाप बिना किसी शोर के, क्योंकि माँ का दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती। सो अब सवाल जो हर घर में गूंजना चाहिए, क्या शादी के बाद अक्सर बेटे अपनी माँ की भावनाओं को समझे बिना अनजाने में ही, सही चले चाहे अनजाने में ही हो, ठेस पहुँचा देते हैं माँ के दिल को या पेरेंट्स के दिल को? क्या शादी के बाद बेटे को जानना ज़रूरी है कि माँ की इज्जत पत्नी की इज्जत जितनी ही है? क्या अभिनव को अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था या अपनी माँ से सवाल करना चाहिए था? क्या एक माँ की नियति सिर्फ देना ही है और बदले में शक और परायापन? क्या ये एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी? क्या ये अभिनव के कहने का ढंग था? बहुत से सवाल हैं, आपसे जानना चाहूँगी। क्योंकि कहा तो यही जाता है ना कि माँ का मन ममता का और प्यार का मंदिर होता है।

0: ये था आज का चिंतन। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब माँ की सारी उम्र की ममता, सारी कुर्बानियाँ, सारी चुप्पियाँ एक ही सवाल से टूट जाती हैं और उस टूटने की आवाज़ दुनिया नहीं सुनती, लेकिन एक माँ का दिल हमेशा सुनता है। सुमन की वही चुप्पी, वही दर्द अब इस गीत में उतर कर आया था। एक माँ के नाम जिसका प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे दुनिया उसे समझे या ना समझे। कहते रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और अगर घर में नई कोई ईंट जोड़ते हैं हम, तो पुरानी नींव जब हिलने लग जाती है तो हम एक नई ईंट जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोष ईंट का नहीं होता, नींव को संभालने वालों का होता है। हर बेटे को याद रखना चाहिए कि पत्नी सम्मान है, लेकिन माँ अस्तित्व है। क्या सच में शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं और फिर हम उन्हें समझाना भूल जाते हैं कि माँ की इज्जत पत्नी की इज्जत जितनी ही ज़रूरी है? क्या अभिनव को अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था या अपनी माँ से सवाल करना चाहिए था? क्या एक माँ की नियति सिर्फ देना है और बदले में शक, ताने और परायापन? बहुत सारे सवाल, लेकिन ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग। कृष्णा जी ने लिखकर भेजा अभी, अभिनव तो अपनी वाइफ को समझाना चाहिए था। माँ इज ऑलवेज राइट, सॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल, थैंक यू। बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपका सामने देखा है मैसेज और मैंने पढ़ दिया। कृष्णा जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये था आज का चिंतन। अगर इसके बारे में कमेंट लिखना चाहते हैं कि अभिनव को क्या करना चाहिए था, तो ज़रूर बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK वालों के जरिए पैसे अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। You can go to transfer the money via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. और आज बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 128 rupees and 5 paise against 1 British sterling pound, and it depends कि कितने पैसे ट्रांसफर आप कर रहे हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Yeah, like on.

0: जी हाँ, लाइका गोल के ज़रिए ही हमारी मुलाकात है और आप मेरा साथ दे रहे हैं जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम पसंद आ रहा है आपको। और अब एक सूचना आप तक पहुँचानी है, कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी, संजय एंड 515 band, and it takes place on Friday 19th June at the Prince Regent's Hotel, Chigwell, Essex. में ये हो रहा है प्रोग्राम। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड।
1: लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha.
1: Available at Falcon stores and all independent stores nationwide.
2: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and garak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
3: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
4: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
3: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
6: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
0: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे।
9: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: इस गीत का खून करने जा रही है सरिता, क्योंकि जाने का वक्त है और आपसे विदा भी लेनी है। और मेरे बाद आ रहे हैं बाली जी। बाली जी का आप साथ देंगे माइक्रोफोन के इस तरफ से मुझे इजाजत। बाय बाय, हैव अ लवली डे।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
1: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Hillaro and Umbro JV acclaimed Gujarati films na national award winning director Abhishek Shah. For ek var leine aavya chhe ek emotional comedy.
9: Atamar to jindgi chhe ke film ni vaarta.
8: Ek ew heart ji kai feel kartu natu. But one beat and everything changed.
10: Tamaru hriday. ડબકારો ચૂકી જાય.
8: ડબકારો સ્ટારિંગ દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ ઇન સિનેમાઝ નિયર યુ.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
13: This Eid, skip the queues and save with Umbala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
14: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
15: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
14: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
15: गारंटेड।
14: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल।
15: फोन 0208574-8410।
14: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
16: Up next, Bally Brumbat with Gold Afternoons on Leica Gold. The Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: झूठ बोल लिया
1: कोई ना,
0: कि मैं कुफर तोल लिया
1: कोई ना,
0: कि मैं जहर घोल लिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।

0: across London. This is Bally Brambat on Like a Gold.
1: Hoya Kurban. वो आंखें थीं दिलबर की या नरगिस

0: वाह वाह, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। पहला तो भंगड़ा हो गया थोड़ा जा। मैं झूठ बोलिया कोई ना, लेकिन जो मैं कहूँगा वो सच सच ही कहूँगा। इस शो में तीन घंटा मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स ऑन 1035 मीडियम वेव DAB एलेक्सा गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com। एंड ब्रिज जी, यस यस यस, मुझे मालूम नहीं था कि सरिता जी ने एक घंटा मेरा हैंडल किया था जब मैं ऑफ था उस दिन। सो सरिता जी, थैंक यू वेरी मच, यू बीन वेरी काइंड इन हैंडलिंग द फर्स्ट आवर। आई गॉट टोल्ड दिस आफ्टरनून व्हेन आई अराइव्ड। एंड नॉट ओनली दैट, आगे जाते हुए क्या होने वाला है, अभी आपने जो दो गाने सुने उसमें मैं एक ट्रिब्यूट करने वाला हूँ। For 2 hours, you're gonna get such a treat, such a treat. आपके मैसेजेस मुझे बताएंगे बाद में, लेकिन it's about a lyricist, a composer, a choreographer, an actor. Actor, यानी के he had very light eyes. मुझे लगता है greenish होंगी, मैं तो black and white photo देखते हैं उनके, लेकिन must have greenish eyes and a handsome looking person who was also a choreographer, not very successful as a choreographer, and then he learned how to compose music and then ended up with being a lyricist, and he was very well known for his patriotic songs. अभी इतना ही कह के मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, I'll continue with the tribute. Third hour में मैं एक competition करने वाला हूँ। Competition एक मेरा यार है जिसका नाम है त्रिलोक शर्मा, उसको मैं कुछ तकरीबन 40 साल से मैं जानता हूँ। इसकी खासियत मतलब कि एकदम बाखूबी से मुकेश जी के गाने ऐसे गाता है जैसे कि आंख बंद करके सुनो तो मुकेश जी ही सुनाई दे, लेकिन रफ़ी जी के भी गाने, और इतना वर्सेटाइल आर्टिस्ट है वो त्रिलोक शर्मा, इतने सालों से सारी जनता जानती है। एंड ही इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग इन अ शो एंड आई एम गोन बी होस्टिंग द शो। इट्स गोन बी कंपेयर्ड बाई मी ऑन दिस पर्टिकुलर सैटरडे 9th May 2026। अभी त्रिलोक की खासियत ये है कि कुछ 500,000 गाने सब ज़बानी याद है, हाथ में कागज़ नहीं है, सामने कंप्यूटर भी नहीं रखा हुआ है, ना कोई पैड रखा हुआ है, ना तो कोई मोबाइल रखा हुआ है, ना तो कोई कागज़ रखे हुए हैं, बस गाते जाएगा और सारे गाने ज़बानी याद है। नाउ मैं यू नो मैं दंग रह जाता हूँ, मैं जब भी पूछता हूँ तो वो ऐसे ही ऊपर हाथ करके, मतलब कि ये ऊपर वाले की देन है। और उनके साथ एक ऐसी धुआंधार सिंगर हु हैज़ कम ऑल द वे सो मैनी ईयर्स अगो फ्रॉम मॉरिशियस, अ फ्रेंच इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग वंडरफुल लेडी एंड अ ब्यूटिफुल सिंगर, ब्यूटिफुल एंड अ वंडरफुल वेलवेटी वॉइस, दैट इज़ वेदा। सो वेदा एंड त्रिलोक शर्मा आर डूइंग दिस पर्टिकुलर शो ऑन सैटरडे 9th May 2026 एट आल्बर्टन कम्युनिटी स्कूल। यू नो आल्बर्टन स्टेशन से निकलो और लेफ्ट मुड़ो तो वो स्कूल आती है, आल्बर्टन कम्युनिटी स्कूल, ईलिंग रोड, वेम्बली, HAO 4PW। एंड टिकट्स आर ऑफ कोर्स अवेलेबल फ्रॉम वीडियोरामा एज वेल, सबसे फेमस, एंड दूसरे नंबर्स भी सारे हैं। लेकिन हैट्स ऑफ एंड सैल्यूटेशंस टू भरत शाह। भरत शाह जो हमारे जिगरी दोस्त हैं, ही इज़ एक्चुअली प्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर शो, त्रिलोक शर्मा एंड वेदा इन भूली बिसरी यादें। इट्स अ लाइव ऑर्केस्ट्रा बाय भवीन मेहता, धुआंधार म्यूजिशियन सब है, सबको जानता हूँ मैं। मित्तल है, ओ हो, मित्तल पुरोहित, दैट्स राइट, हमारे वंडरफुल लिसनर्स चारू एंड दिलीप के बेटे मित्तल पुरोहित, वेरी फेमस एंड धुआंधार म्यूजिशियन। फरनाज, देन इवेंस, देन वी गॉट भाविन, ऑफ कोर्स भाविन बिकॉज उसका ऑर्केस्ट्रा है, एंड साउंड बाय अमर। यस अमरपा जी मिलना होगा जरूरी, एंड दिस इज द शो दैट इज हैपनिंग इन अल्बर्टन कम्युनिटी स्कूल. टिकट्स आर £20 इंक्लूडिंग डिनर. यू कॉन्ट बिलीव इट. एन एम्पल पार्किंग. जो लोग वहाँ आए उनको तो मालूम ही है. सो द डोर्स ओपन एट 5 PM. Then the dinner will be served at 6 PM and the show starts at 8 PM. Aram se baith ke jamo tame and khana khao and sare gaane suno. Maine jo list dekha gaanon ka, oh my god, it's a real treat and I'm looking forward to it because I'm hosting the particular show. And the sponsors, we have names here: Taste of Kenya, then Masala Mart, there is SBI UK, and Leica Gold Radio. That's right. So it's going to be a lot of fun. And in the third hour, if I get a chance, I'll get Veda coming and joining us. And tomorrow, I'm doing the same competition, and two people will get tickets, a pair. So a pair today and a pair tomorrow. Not the fruit, but P-A-I-R. Okay, so Trilok Sharma and Veda. So Veda might come over at around 3 o'clock and कुछ बातें करेंगे हम उनके साथ. दो लाइन भी सुन देंगे. अगर मूड में हुई तो गा भी देगी. पर बड़ा मज़ा आएगा. सो कॉम्पिटिशन इन द थर्ड आवर. जुड़े रहिएगा. अब मैं आपको ट्रिब्यूट की बात करता हूँ. प्रेम धवन, who was born on 13th of June 1923 in Ambala, Punjab. Maine Punjab to bol diya, lekin it's actually now Haryana, Ambala. And his father was a jail superintendent for the British government. And he died at the age of 77, that's 7th of May 2001. This was only a month, 30 plus days, 38 days before his 78th birthday. His wife Uma he left behind, and then daughter Shyamli. Now the story goes like this. You know, Prem did his college studies in Lahore, during which he was involved with the activities of the Communist Party of India. And then career-wise, dekha jaye to 23 saal ki umr mein, साल था 1946, ही स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट ऑफ कंपोजर ख्वाजा खुर्शीद अनवर इन ख्वाजा अहमद अब्बासीज फिल्म आज और कल. तो वो 1946 की बात है. ही देन मूव्ड टू द ग्रेट नगरी बम्बई नगरिया टू जॉइन इप्टा. ही जॉइंड इप्टा. इप्टा क्या होता है? इंडियन People's Theatre Association, formed on 25th of May 1943, and they promoted themes related to the Indian freedom struggle. The goal was to bring cultural awakening amongst the people of India. In 1943, its president was Prasanna and secretary was Tanveer Akhtar. So inko join karke inko fayda hua. He benefited. How did he benefit? We are talking about Prem Dhawan. Prem Dhawan benefited because he learned classical music under the renowned Ravi Shankar, the sitar player. Ravi Shankar ne inko sikhaya classical music. Abhi that was his career wise dekha jaye to sangeet kaise inhone prapt kiya. Abhi debut as a lyricist for the film Dharti Ke Lal, Hindi version of ek film thi Apurva Sago Dharargal. एंड उसका जो ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में, तो वो फिल्म के लिरिक्स इन्होंने लिखी. देन अ स्ट्रिंग ऑफ फिल्म्स. कैसी कैसी फिल्म? आराम, तराना, आसमान, शोला और शबनम, काबुली वाला जिसका आपने गाना सुना अभी, या कुर्बान, हाँ वो, और उसकी लिरिक्स उन्होंने लिखी. एक फूल दो माली, वाह, आपने वो गाना सुना, ए मेरे प्यारे वतन, 1961 की काबुली वाले का गाना, वो भी इन्होंने ही लिखा. एंड पूरब और पश्चिम, गीत फिल्म, पवित्र पापी, मेरा नाम जोकर में एक गाना है उनका, 10 लाख, फिर शबनम, एंड देन देयर वाज जबक एंड वचन. वचन वाज द फिल्म रवि, म्यूजिक डायरेक्टर रवि की पहली फिल्म थी. इट वॉज अ डेब्यू फिल्म. एंड देन एज अ कंपोजर, प्रेम धवन ही कंपोज्ड सॉन्ग्स ऑफ फिल्म शहीद, मनोज कुमार की. एंड देन नानक दुखिया सब संसार, जब वहाँ उनको नेशनल अवार्ड मिला, मैंने स्पेलिंग्स देखे नेशनल अवार्ड की लिस्ट में, तो उनका उनकी लिरिक्स लिखने का जो नाम लिखा हुआ था बेस्ट लिरिक्स, वो नाम गलत छापा था इन्होंने। इन्होंने प्रेम क्या लिखा था, धवल ऐसा कुछ लिखा था, इट्स एक्चुअली धवन। 19th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, आप लिस्ट देखना, उसमें नाम गलत छापा है। पवित्र पापी का संगीत इन्होंने दिया, शहीद फिल्म का इन्होंने दिया, आधी रात के बाद 65 की फिल्म का म्यूजिक इन्होंने दिया, एंड देन लवली सॉन्ग्स, लवली सॉन्ग्स, ऐ मेरे प्यार, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, शहीद फिल्म का गाना, एंड मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, वो भी गाना इन्होंने ही कंपोज किया। एज एन एक्टर ही एक्टेड इन लाजवाब फिल्म एंड गूंज उठी शहनाई, दो फिल्मों में एक्टिंग भी किया इन्होंने। एज अ कोरियोग्राफर आई मीन सेवरल फिल्म्स थी, ये फिल्म जो डेब्यू ऑफ रवि वचन फिल्म, उसका कोरियोग्राफी किया, वक्त, धूल का फूल, गूंज उठी शहनाई, दो फूल, नया दौर, फिर शहनाई, दो बीघा जमीन, आरजू, शीशमहल, ऐसी फिल्मों के, लेकिन ही वॉजन वेरी सक्सेसफुल एज अ कोरियोग्राफर। द सैड पार्ट इज his career faded towards the 80s and did not have any notable contribution, and he died of cardiac arrest on 7th May 2001. Let's listen to songs of Prem Dhawan after the Kumar Sanu song next.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128.05 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 our line.
4: Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 9203965757. Greece by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
11: अरे समझो हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी।
12: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
14: This is Leica Gold.
0: Wow, wow, wow. Good announcement here. Because बहुत कम tickets रह गई है. किसकी tickets? आप पूछ रहे हो. अरे कुमार सानू. कुमार सानू live in concert. The King of Melodies. He returns to the UK for one night only and catch the superstar singer at the prestigious Royal Albert Hall on Bank Holiday Monday 25th of May. Now get your tickets from the venue, that is Royal Albert Hall, or Ticketmaster, exclusive radio partners, Leica Radio Network. Yo!

0: breakfast at 6am and drive back with Sandy Shah at 4pm. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Two businesses,
5: same town,
4: same service.
5: One appears on page one of Google,
4: the other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: लंदन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है. फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026. लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स. 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल. फॉर टिकट्स कॉल मंजीत बमरा एट 7956300367. एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
8: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जेमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
7: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मेक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जेमिन्स पोटैटो चिप्स.
8: जेमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
9: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 0737522418. Choose buybullion24.co.uk today.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
11: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी.
12: अच्छा काना, क्यों जा रहे हो?
13: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं.
11: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला.
13: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा.
11: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू.
13: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी.
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: Leica Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे.
0: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: संगीत खयाम का और प्रेम धवन की लिरिक्स. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ प्रेम धवन.
1: Radio 90s. Leica Radio Punjabi. Leica Gold 2. Now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: ये गाना उन्होंने लिखा ही नहीं लेकिन कंपोज भी किया. सुनिएगा प्रेम धवन.

वाओ वाओ, व्हाट अ सॉन्ग। शहीद फिल्म का 1965, क्या कंपोजिशन। एंड यू आर राइट शकीला जी, आपने जैसे कहा कि बाली जी, व्हेन यू आर टेलिंग देयर स्टोरी आई एम थिंकिंग हाउ डिड दे वर्क सो हार्ड, एंड आई मीन ऑल द लिरिसिस्ट्स, कंपोजर्स वगैरह वगैरह, एंड द रिजल्ट्स दैट केम आउट अनफॉरगेटेबल, वी आर स्टिल एंजॉयिंग इन दिस प्रेजेंट डे एंड एज। यू आर सो राइट। And this is also one of those item songs. सब चटपटे गाने मैंने सुनाए, आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी ने पूरब और पश्चिम में ये गाना गाया था, एंड लिरिक्स वर बाय प्रेम धवन। नेक्स्ट आवर में स्लो गाने।

0: अभी दोनों गाने आपने सुने, कैसे सिमिलर मीनिंग वाइज, तेरी दुनिया से दूर चले, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, वो पहला गाना फिल्म जबक्का 1961 में, जब चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और प्रेम धवन ने लिरिक्स लिखी थी। फिर 1970 में, 9 साल बाद, प्रेम धवन गॉट अ मूवी टू कंपोज म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, पवित्र पापी। उसमें उन्होंने सेम तरह से लिखा, लेकिन थोड़ी सी लिरिक्स कैसे चेंज की, तेरी दुनिया से होके मजबूर, उसमें था तेरी दुनिया से दूर चले, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर। सो तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, और यहाँ पे तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, व्हाटएवर। अभी मैं गाने लगूंगा तो दो चार मैसेजेस आएंगे, प्लीज़ गाओ मत। तो चित्रगुप्त का संगीत था, और यहाँ पे फिल्म पवित्र पापी का म्यूजिक बाय प्रेम धवन एंड लिरिक्स बाय प्रेम धवन। कितने खूबसूरत दो गाने। एंड वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ प्रेम धवन, जिनके पिताजी वॉज अ जेल सुपरिंटेंडेंट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बेटे को बड़ा पोएट्री में शौक था, फिल्मों में शौक था, डांसिंग का शौक था। सो ही बिकेम अ लिरिसिस्ट, अ कंपोजर, अ कोरियोग्राफर एंड एन एक्टर बिकॉज ही वॉज गुड लुकिंग टू। उनको एक अवार्ड मिला था 1970 में, दैट वॉज द पद्मश्री। एंड 1970 में वो तो मिला था, लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड उनको मिला था फॉर द बेस्ट लिरिक्स इन 1971 की जो अवार्ड सेरेमनी थी, 19th नेशनल अवार्ड की सेरेमनी, नानक दुखिया सब संसार, पंजाबी। और इनके लिखने का ढंग आपने नोटिस किया होगा कि मैंने स्टार्टिंग से ही जब गाने इनके सुनाए तो एक गाना था, मैं कोई झूठ बोलिया कोई ना भाई, मैं कुफड़ तो लिया कोई ना भाई कोई ना। सो वो गाना ही हैड दैट पंजाबी ढंग इन इट। एंड देन दूसरा गाना जो था एक कौन सा था, लड़ी रे लड़ी तुझसे आंख जो लड़ी, जगजीत कौर का गाया हुआ, जो खयाम साहब ने म्यूजिक दिया था, उसमें भी पंजाबी ढंग था, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, वो भी पंजाबी ढंग का। एंड देन पंजाबी स्टाइल की कॉमेडी एंड लिरिक्स इन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उनका ये अंदाज बड़ा अच्छा था। लेकिन जब सीरियस गाने लिखते थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, आपने ये दो गाने सुने, तेरी दुनिया से होके मजबूर और तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर और तेरी दुनिया से होके मजबूर। अभी आई कीप ऑन गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स विद दैट वन, लेट मी गेट आउट ऑफ दैट लूप। प्रेम धवन वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड द नेक्स्ट जो गाने आएंगे, ए मेरे प्यारे वतन काबुली वाला का गाना जो है, एंड देन किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, जो रवि ने गाया और इन्होंने लिरिक्स लिखी, एक फूल दो माली की लिरिक्स उनकी थी, एंड सीने में सुलगते हैं अरमान, माय गॉड, तलत महमूद का गाना आ रहा है लता मंगेशकर जी के साथ। सो मतलब पंजाबी ढंग, लेकिन सीरियस गाने भी और पेट्रियोटिक गाने भी, कितना टैलेंटेड आर्टिस्ट। और 1980s में काम नहीं था इनके पास, इट जस्ट फेडेड आउट। सो नाइंसाफी हुई है इनके साथ, लेकिन लेट्स सेलिब्रेट एंड रिमेंबर हिम टुडे। 7th May 2001 ही पास्ड अवे, एंड व्हेन ही पास्ड अवे इट इज़ हिज 25th डेथ एनिवर्सरी। चाहे 50th हो, 25th हो, कोई भी हो, हम इनको कभी नहीं भूलेंगे और इनके गाने हम सुनाते ही रहेंगे। और इन्होंने एक्टिंग भी की थी फिल्म लाजवाब में और गूंज उठी शहनाई में, आप फिल्म देखिएगा आपको पता चलेगा वो कितने अच्छे गुड लुकिंग थे वो, एंड कोरियोग्राफी भी की थी बहुत सारी फिल्मों में। सो लेट्स गेट ऑन विद म्यूजिक, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट आपकी खिदमत में ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स विच इज स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन, दैट्स राइट, जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And £1 in British sterling can get you up to 128.5. I repeat, 128.05 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
5: Oh, Julilal Kalandar, mast, mast, dam, mast.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at quality food stores and all independent stores nationwide.
1: Mum, I'm outside.
2: Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
8: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
7: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
9: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
10: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
9: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
13: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
14: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
12: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
14: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
12: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
14: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
12: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 02033-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
0: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
16: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
17: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: What an amazing young voice of Lata Mangeshkar with Talat Mahmood. और हमारे दोस्त है अरुण चेंडुरनीकर, who has played with Talat Mahmood all around the world, and he's enjoying the show as well.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu, and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अनिल बिश्वास का संगीत एंड प्रेम धवन की लिरिक्स थी वो. अब रवि का संगीत और रवि जी की आवाज एंड लिरिक्स. एक फूल दो माली फिल्म का प्रेम धवन की लिरिक्स. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ 25th डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्रेम धवन.
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
0: रवि जी कह रहे हैं, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया. ब्यूटिफुली संग एंड ब्यूटिफुली रिटन बाय प्रेम धवन.

क्या फीलिंग्स है। फिल्म है प्रेम का सागर, 1961 की फिल्म, जहां पे प्रेम धवन ने ये लिरिक्स लिखी। आज भी दुनिया सुनती है मुकेश जी की आवाज को, रवि का संगीत, लेकिन कोई नहीं जानता कि लिरिक्स किसने लिखी, गाने को पैदा किसने किया। इन्होंने लिरिक्स लिखकर रवि को दी और रवि ने कंपोज किया। गाने को जिसने जन्म दिया उसको हम भूल जाते हैं, ये हमारी एक गलती है, यू नो। सो लेट्स ऑलवेज रिमेंबर सच वंडरफुल पीपल लाइक प्रेम धवन।

0: तुझको मैं जान दे।
1: इसमें सिर्फ वही वही का कमाल है। उन्होंने अगर चाहा था तो लिख सकते थे, तुझको मैं जान गई जाने मन, तुझको मैं जान गई जाने मन, पर वो बात नहीं है। वही वही उसमें नशा है।
2: वही वही वही वही
0: वही वही वही
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3622. Indian rupees 128.25. Pakistani rupees 379.69. Afghanis 85.86. And Kenyan shillings 175.94.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: बोले तू क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.

मैं आपको फिल्म काबुली वाला का गाना जो मन्ना दा ने गाया था, पेट्रियोटिक गाना, दैट वाज रिटन बाय प्रेम धवन एंड सलील चौधरी का संगीत, दिस वाज हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, सुनिएगा।

0: कितना मजा आ रहा ना।
1: वाह वाह वाह। एंड ये गाना जो कुमार सानू का जो गाया संजीवनी के साथ, इतना खूबसूरत गाना है और संजीवनी ने निभाया कुमार सानू के साथ, फिल्म करीब का गाना 1998 का। And I hope you're enjoying yourselves because मैं हूँ Bali Brahmbhatt on Laika Gold with Gold Afternoons on 1035 medium wave DAB Alexa Google Home and LaikaGold.com. And लक्ष्मी जी आपने कुछ मुझे मैसेज भेजा है लेकिन आपके स्पेलिंग्स बड़े हॉरिबल है। ऑनेस्टली इट्स वेरी इरिटेटिंग वेन यू डोंट स्पेल करेक्टली, तो पता नहीं चलता कि मैसेज क्या है, एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो आप, मुझे समझ नहीं पड़ रही है। सो प्लीज़ गेट योर स्पेलिंग्स करेक्टेड एंड देन यू सेंड इट टू मी एंड आई लव टू रिप्लाई टू यू, यू नो। सो आगे जाते हुए विजय गुनोवा जी, आपने बड़ी प्यारी बात कही आज एंड आपने कहा कि दुनिया भर में जहाँ भी हम बसते हैं, दुनिया भर में कनाडा हो, यूएसए हो, मॉरिशस हो, या अफ्रीका हो, या यूके हो, जब हम ऐसे गाने सुनते हैं जैसे वो काबुली वाला का गाना जो था ऐ मेरे प्यारे वतन, तो सबके दिलों में एक ही फीलिंग होती है, यू नो, द मिसिंग ऑफ द रूट्स दैट वी कम फ्रॉम। यस, चिट्ठी आई है वो गाना भी सेम फीलिंग्स आती है, सम ऑफ द वंडरफुल राइटिंग्स बाय वंडरफुल पीपल। सो थैंक यू फॉर योर मैसेजेस एंड इट्स वंडरफुल टू हैव सेंसिबल मैसेजेस हियर एंड आई एंजॉय इट वेरी मच। सम पीपल गेट इरिटेटेड वेरी क्विकली बट देन यू गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बींग इंक्लूडिंग मी। अगर मैं 100% होता तो मैं इस रेडियो स्टेशन पे नहीं होता, आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड कभी कभी उम्र का तकाजा होता है, जो कभी कुछ भी होता है, सबकी डायलैक्ट्स अलग होती है, किसी की पंजाबी एक्सेंट होती है, किसी की गुजराती एक्सेंट होती है। अगर हम अफ्रीका से आते हैं तो गुजराती को ऑस्ट्रेलियन समझते हैं इनकी एक्सेंट समझ के। सो समझा करो, एवरीबडी ट्राइज देयर बेस्ट टू डू देयर बेस्ट, यू नो। एंड अगर मैं बड़ा होता और मुझे उर्दू सिखाई जाती तो मेरा काफिया और रदीफ और जो भी मेरी बोली है वो कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन हम कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप समझा करो और कभी कभी मैसेजेस ऐसे मत भेजा करो जिससे कोई सामने वाला हर्ट हो जाए, है ना। तो सोच के बोला करो क्योंकि आप में भी कमियां होंगी एंड मुझ में भी कमियां होंगी। सो très bien, merci beaucoup, je parle un peu de français mais je vous comprends। आगे जाते हुए रेट्स देखेंगे और गाने भी, और आशा पारेख का एक गाना जो है जो इन्होंने जॉय मुखर्जी के साथ गाया था, तो जॉय मुखर्जी के साथ जो गाना गाया था उसमें वो लोग स्टेज के ऊपर गाते हैं और सामने दोनों के पास माइक है, लेकिन गाते गाते वो डायरेक्टर भूल गया कि इनको कहना है कि माइक के अंदर मुंह डाल के गाओ, क्योंकि पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि रियली गा रहे हो, लेकिन ये लोग तो घूम रहे हैं एक फुट दो फुट दूर माइक से, और झुकने की बात आती है तो माइक से एकदम झुक गए जॉय मुखर्जी, और माइक से इतने दूर और रफ़ी साहब की इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनाई दे रही है, सो इट डजेंट लुक नेचुरल। ऐसा एक गाना है फिर वही दिल लाया हूँ का, बड़ा मजा आएगा सुनने का, सुनते रहिएगा।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And looking at the rates here, £1 in British sterling today could get you up to 128.05 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Ye hai Laika Gold.
0: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoon.
0: Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: हेल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्सना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
5: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
4: एक यू हार्ट जी कई फील करतू नहोतू।
6: मारी वार्ता अधूरी छे भाई।
4: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
7: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
4: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई।
8: लोकेशन अहींना करेला अहींज भोगवाना छे।
4: इन सिनेमास नहीं आयू।
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
10: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
11: No more worries for me or you.
12: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
16: 100% halal meat, prepared with care every day.
15: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
16: And don't forget, get your favourite frozen items too.
15: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
16: There is only one.
17: Location, location, location.
18: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
17: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
18: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
17: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
18: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
17: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
18: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
17: high appreciation
18: in Dubai.
19: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 0737522418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
20: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
21: BAPS મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
20: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
21: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
20: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
21: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
20: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
21: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
22: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
9: Like a gold.
1: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आजब की खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से।
1: वाओ
0: ब्यूटिफुल सॉन्ग।
1: ओ माय गॉड, आपने मैं मेरी लाइन गाने वाला था और आपने ले ली मेरी लाइन।
0: सॉरी
1: द पब्लिक, एवरीबॉडी इज क्लैपिंग नाउ। एंड यू नो व्हाट, योर प्रोनाउंसिएशंस, यू नो, खुद द वे यू पुट द उर्दू अंदाज में जो, यू नो, एंड यू आर फ्रॉम मॉरिशियस, फ्रेंच स्पीकिंग, एंड अमेजिंग द वे यू कॉट ऑन विद द लिरिक्स एंड एवरीथिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल। हैट्स ऑफ टू यू, प्रॉमिस यू।
0: थैंक यू सो मच।
1: वन मोर वन लाइनर प्लीज।
0: One more one liner. Okay, there's another beautiful song that I love.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा
1: अवेलेबल एट फल्कन स्टोर्स एंड ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशनवाइड.
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
1: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
1: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
1: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms conditions apply.
1: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
3: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राइम शेप में है वो बचपन की याद.
4: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
3: जेमिन फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
5: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय. इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का. सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो. सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
7: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
8: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
9: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
10: Indian rupees 128.13, US dollars 1.3618, Pakistani rupees 379.55 and Kenyan shillings 175.87.
11: Leica Radio.
9: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
12: Leica Gold.
9: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
10: Gold is currently trading at £112.36 per gram.
9: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. India Cricket Score Updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
10: Lucknow Super Giants are batting and they've kept up with 10 runs and over. In the 7th over, they've scored 75 runs and Royal Challengers Bengaluru are fielding.
9: India Cricket Score Updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
14: Hello. Hello.

0: Tuning into the sunshine on Leica Radio Network.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
4: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination. We'll be right back.

0: as tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
3: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
4: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
2: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
4: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
2: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
4: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
5: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
6: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
5: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
8: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
9: Travel in style ka vaada hai. Kahin bhi ghoom kar aaiye. Flights aur holidays ki best prices ke liye hamare paas aaiye. Apne early bird discount ke liye number milaiye. 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Aapki man ki tasalli ke liye ye fully bonded hai.
10: Travel in style.
11: Travel in style.
10: Travel in style.
12: Like a radio network. Proud hospitality partner. Ragasan. Like a radio. Finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: Basmati Rice.
1: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha.
2: Available at Vulcan stores and all independent stores nationwide.
3: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
4: 100% halal meat prepared with care every day.
3: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
4: And don't forget, get your favorite frozen items too.
3: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
4: There is only one.
5: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
6: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 0737522418. Choose buybullion24.co.uk today.
7: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहे छे.
8: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रहे छे आप पवित्र यात्रा पर.
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स.
8: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
7: दर्शन पण अने यूरोप पण.
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
7: कॉल 0208900-2323. द स्टार टूर्स.
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
1: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला. प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर. यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन और इन स्टोर. फ्रॉम स्टनिंग गिफ्ट टिन्स टू रसमलाई एंड मोतीचूर लड्डूस. डोंट वेट, द ऑफर एंड्स ऑन द 10th ऑफ मे.
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Weddings and Beyond with Donny Brasco.
10: It was these two creators and they had a wedding and they only had about 20 people and they were able to do individual introductions of all their guests to introduce them to other guests and how much they meant to them in their life. And I just thought that was so nice. I mean, if I did that for 300 people, they'd be there for a week.
9: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
11: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.
12: I love this one.

0: across London, Manchester and the Midlands.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
5: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें. हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 02089072444. दैट्स 02089072444.
1: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
2: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: Gold Nights. Like a Gold on 10:35 AM.
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like R. Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 0208574-8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
7: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
8: अच्छा काना, क्यों जा रहे हो?
9: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
7: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
9: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
7: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
9: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
11: Bollywood classics ka saath, sirf Leica Gold par.

0: biggest classics throughout the night, non-stop, on Gold Nights. Laika Gold, on 10:35 a.m.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: This Eid, skip the queues and save with Umbala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
9: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: bringing to you the best classics all night. Like a Gold on 10:35 AM.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Mum, I'm outside.
6: Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
10: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।